भूतक लिखयो बहर देखमायदम फी कुल शयन यतम गद्वत बरकवर तथा इसम कलादी मुल्क दूत फी कुल शय करीम व मुबारक मा यसअल मसीह इब्न कल हबीब व रूह अल कुदुस बरक।